तुम्हारा क्वार्टियर या हूँ मैं अफ्रीका नर्बुर फ्राउ एक वो डंकी से फॉर ऑलस व्हाट जय इस दैट जय यू बेस्ट हियर एल्के डग इज हैक यू मिस इन एक्सियन याउ Mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer, meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.